मिले प्रभ सार्थ, मुक्त प्राण जप हर किरतार्थ, वाचै वादना वेद विचार, आप डुबै क्यों पितरा तारै, वाचै वेदना वाचै वादना वेद विचार है, आप डुबै क्यों पितरा तारै, घट घट ब्रह्म चीनै जन कोय, सतगुर मिले तासो जी होय, गणत गणिया सहसा दुख जीयै, गुर की शरण पवै सुख तीयै, कर अपराध शरण हम आया, गुर हर भेटे परब कमाया, गुर शरण न आईय ब्रह्म न पाईय, भरम भुलाइय जन्म मर आईय, जम दर पादो मरे बेकार, ना हृदय नाम न शब्द आचार, एक पांदे पंडित मिसर कहावै, दुबदा राते मैल न पावै, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मदे को जन अपार, एक बुरा भला सच एक है, बुझ ज्ञानी सतगुर की टेक है, गुरमुख वर्दी एको जानिया, आवण जाना मिट समाणिया, जिनकै हृदय एक अंकार, सर्वगुणी साचा विचार, गुर कै भाणे कर्म कमावै, नानक साचे साच समावै, राम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया शीजै, वर्त तपन कर मन भीजै, राम नाम सारे वरना पूजै, गुर सेव मना हर जन संग कीजै, जम जंदार जोहे नहीं सकै, सरपन डस न सकै, हर का रस पीजै, रहा वाद पड़ै रागी जग भीजै, रैगुण बिख्या जन मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चाड़स पवन सिंघासन भीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास नीजै, अंतर पंच अगन क्यों धीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीरथ प्रमीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै, कत पया दोष का को दीजै, अन्न न खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै, मनमुख जन्म जन्म मरीजै, खाहे देही दुख मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, ऊंदर दूंदर पास तरीजै, धुरकी सेवा राम रवीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभ कीजै, राम कली महला पहला, अंतर उच भज अवर न कोई, जो कहिए सो प्राप्त होई, जुगा जुगांतर साहिब सच सोई, उत्पत परलो अवर न कोई,

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाए संख पापी पाप असंख कूड़े आर करे सदाए संख मलेच मल पाखाए असंख निंदक कर नानक नीच कह बारे न जावा के जो तुम पावे सही सही कर सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत लो संत

जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय चढ़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम न हुई तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हुई

अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालेओ, जिन कीती सो पार पया।

और सतगुर प्रसाद सो दर तेरा के हा सो घर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संखा किते तेरे वावन हारे किते तेरे राग परिस्यों कही है किते तेरे गावन हारे गावन तुदनौ पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनौ चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बीचारे गावन तुदनौ ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनौ इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनौ सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनौ साध बीचारे गावन तुदनौ जति सति संतोखी गावन तुदनौ वीर करारे गावन तुदनौ पंडित पढ़ नरखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनौ मोहनिया मन मोहन सुरग मच पयाले गावन तुदनौ रतनो पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले गावन तुदनौ जोध महाबल सूरा गावन तुदनौ खाणी चारे गा

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया, तुद बिन सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिले ना ही ठाकर हाईया, आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक।

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक।

तिस पाछे बचरे छरेया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करेया। सब निदानु दस अष्ट सिदानु, ठाकुर कर चल तरेया। जन नानक बल बल सद बल जाई।

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे

हर त्यावहु संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक।

तू आपे करहें सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह

मूरख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पही परापत मान।

तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है।

आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपान अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव आब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रनकाता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रच्छा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो ताकि ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई दुष्ट चाह चवस कै न कोई।

उधारु। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर धारु। तम संसार चरण लग थरिय, सब नानक ब्रह्म पसारु।

जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप वारियन गुर की पैरी पाए काज सुवारियन हुआ आप दयाल मनु ना विसारियन साध जना कै संग पवजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहि विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माहि जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि तिस साहिब की टेक नानक मने माहि जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तू।

आप जी के पावन पवित्र दरबार विच अमृत वेले तो हाजरियां भर दें हुईयां बेअंत बेअंत भुलां दी आप जी ने खिमा कर देनी अगे तो सावधानता बख्शिश करनी बाणी शुद्ध अते स्पष्ट पढ़न सुनन विचारन दी दात प्रदान करनी अपनी दर घर दी सेवा दे आप योग बना लेना गरीब नवाज बेअंत संगतां ने आप जी के पावन पवित्र चरणा दियां हाजरियां भरियां तिल फुल भेटावां माए आप जी के चरणा विच भेटा कीती कृपा करनी समूह संगत दी हाजरी भेटा दर प्रवान करदे हुए सबना नूं दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना घरां परिवारां विच सुख वरतौणी बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना गुरसिक्खी दी दात बख्शिश करके नवाजना बेअंत संगतां वल्लों मीडिया दे माध्यम राहीं हाजरियां भरियां गईयां सेवावां भेजियां गईयां गुरम

जी कृपा करनी, आप जी के दर घर दे प्रीतवान भाई महिंदर सिंह जी बाजवा तिन्हां नूं दे अरोगता दी दात बख्शिश करके नवाजना गरीब नवाज। आप जी के दर घर दे प्रीतवान समूह मावी परिवार वालों गगनदीप कौर जी के जन्मदिन की खुशी विच अरदास बेनती करवाई जाती है। गरीब नवाज कृपा करनी, गगनदीप कौर के सिर से मेहर भरिया हथ रखना, चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना, लम्मी आरबला बख्शिश करनी, जीवन विच सफलतावां प्रदान करनिया, समूह मावी परिवार के सिर से मेहर भरिया हथ रखना, बेअंत माया अरदास भेटाई खजाने भरपूर करने, किरत कमाइया सफलियां करनिया। गरीब नवाज आप जी की कृपा दे सदका चार पैर सुख भाणी अंदर बतीत होया दिन आप जी की कृपा विच बतीत होया, कृपा करनी, रहन प्रारंभ हुई आप जी ने सुख भाणी अंदर आनंदमई बतीत करवाउणी, सतगुरु जी बख्शिश कीते भंडारिया विचों कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जी, कृपा करो पावन पवित्र हुक्म बख्शो, हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो, परंत रात्रि दे दीवान सजाउण दी आग्या होवे, सुख होवै नाम चिते आवै, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया।

चुकी साईं पीत हिंजी काडिया जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरहो से वाडिया

0: जैसा सतैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुरु प्रसाद तत् सब बूजिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, न किश जन्मे न किश मरे, आपन चले तो आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनेक जुगत राज थाप उथाप, अभिनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहे ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाय त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुसुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेलय कृपाल, गुरु का शब्द जप पहि निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड भागै, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए होवै सो होए, करणे हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निदान उन्हों बने आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान, सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जाकै सिमरन उदरीय, नानक तिस बलहार अष्टपदी, टूटी खंडन हार गोपाल, सर्ब जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अभिनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कशु न होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरे किश काम, गात नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल घट सो है, तनवंता होए क्या को गर्भै, जा सब किश तिस का दिया दरबै, अत सूरज को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को होए बहे दातार, तिस देन हर जाने गवार, जिस गुर प्रसाद टूटै हों रोग, नानक सो जन सदा अरोग, ज्यों मंत्र को थामै थमन, त्यों गुर का शब्द मनै अस थमन, ज्यों पखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लागत निस तरै, ज्यों अंधकार दीपक प्रगाश, गुर दर्शन देख मन होए विगास, ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाशो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बेल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसै चितार, जो काश करै सोई सुख मान, भूला काहे फिरया जान, कौन बस आई तेरा संग, लपट रहे ओ रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पथ सेती कर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल, लाद के बसंत संग जाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगै सोए, एहो वापार विरला वापार, नानक ताकै सद बलहार, चरण साध के तुहे तुहे पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो इसनान, साधु प्रजाई है कुर्बान, साध सेवा वडभागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है, अनक बिगन ते साधु रखे, हर गुण गाए अमृत रस चख है, ओट गही संत दराया, सर्व सुख नानक ते पाया, मेरे तक को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार, सर्विन धान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब केश तिस का ओह करन जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते उच निर्मल ए करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिय ते होलोए, जाकै हृदय एको होए, सच करणी सच ताकी रहत, सच हृदय सत मुख कहत, सची दृष्ट साचा आकार, सच वरतै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, सलोक रूप न रेख न रंग केश त्रेहो गुण ते प्रब भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी आपे नासी प्रभ मन मै राख मन मानुख की तू प्रीत त्याग तिस ते परै नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कह मन एहो अन राओ मनसा पूर्ण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जा का नेत्र फोरत इसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए घर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला की मितनाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान तिहन जिन दे जनदास नाम त्या वैसे तेहो गुण में जाको परमाए जन्म मरै फिरावै जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना बेद कीनो बिस्तार प्रभ अभिनाशी एक ओंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहे ओ पूरन सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाई अपनी कीमत अपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवन नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम कै संग उधरे सुन श्रवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जनगत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसै सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाकै हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोई नाम जप ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सुकरण हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो ते सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बूझया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सुवड़ भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सबत हरी आपे गुण कारी सबत सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावण तिन मूल पछान्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपव होए बसाना जिस ते उपजै तिस माहे समाना बस्त माहेले बस्त गडाई ताको भिन ना कहना जाई बूझे बूझन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सा सुमारे अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवकी सर पर रखै, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवकी आप पत रखै ताकि गत मित कोई ना लाखै। प्रभ के सेवक कौ को ना पहुचै, प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैदस प्रगटाया। निकी कीरी मैं काल रख है, भस्म कर लस्कर कोट लख है, जिसका शासन काटते आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बहु भांत, तिसके करत ब्रथे जात। मर न रख है अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मन तन तृपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नाहीं दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृपताने, मन तन नामे नाम सुमाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। बोलो जस जिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने सिउ रहहि समाए। जो होआ होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिन की ओटले, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता, तिसकी शरण सर्ब सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। अवर स्यान पसगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिस का नाओ, तिस कै संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुरु सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडपागी हे। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुरु सिख कौ जी नाल समारै। गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन मै सहै, आपस को कर कश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद तिहावै। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए ने कामे, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मातले। बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्ब निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मह जान जन मैं, पार ब्रह्म एक आप नहीं कश परम, सह सियाण पलै न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगा गवे। सुन कर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अख्याओ जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए। जिहबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूरन बबेक, काहू बोल न पहुचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सद बलहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण तास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग न लेप, मन में राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासी नानक भरम मोह दुख तै तेनासी तपत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंधेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चुका निरपौ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका साथ तिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग सपहि प्रगास साधु कै संग राचे रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी श्लोक साथ न चालै बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसारो चरण कमल रिद मैं उतारो करण कारण सु प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हरवत ए तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्ब निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रभु दो हर कै नाए दै तिस ताव ते आवै ठाए ताको बिघ न लागे कोए जाकै हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आतम प्रगास तित कर जाए बसै अभिनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन मरै सो काचो काचा आवागवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इउं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पाव न छूटन हारे सिमरत सास्त वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इन ते कहो हो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बिस्थार इन ते काहु हो कवन छुटकार आस हस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले ए आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किरबिक जाए आप जपहो अवरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार पूत सत हर को नाउ सह सुबाई नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बिक फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल शाड सयाणप सगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी सांझ करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साल आहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक बिस्थार एक ते पहे एक आराध पराशत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक
1: जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तव शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी

सद संग हजूरी, जिसका सा तिनिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते खाडे, जन्म जन्म का टूटा गाडे। गुरपुरै तते है बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया। साधन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अगरह नाम जपावो। भगत पाए तरिये संसार, बिन भगती तन होसी छार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम।

अपना सी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे

सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवंत तरन महे आकाश पयाल सर्व लोक पूरन प्रतपाल बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म औन पानी बै संतर माहे चार कुंत दै जिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं।

निरंकार अशंख नाव शंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार हो अखरी नाम अखरी शाला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाणु अखरा सिर संजोग वखाणु जिन्हें लिखे तिस सिर नाहे जिव फरमाए तिव तिपाही जीता कीता तेता नाओ विण ना वै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर कर देहे पानी धोतै उतरस खेहे मूत बलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग कुन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दया दत दान जी को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगा तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्ताथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन तित कवन वार कवन सिरुति माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे हुआ लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण तित वारना जुगी जाने रुत माहु न कोई जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सुई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुए नानक जी को आपौ जाने अगै गया न सू है पाताल पाताल लख आगा सा आगा सूड़ कोड़ कपाल थके वेद कह निकवात सह सठार कहन कतिबा असलू एक तात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाइया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिए समुंद साह सुल्तान गिरह सेती माल तानू कीड़ी तुलना हो बनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत न करने देन न अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे

प्रभु वै कोई तिसुचे को जाने सोई जीव डाप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाई वड्डा दाता तिल न तमाई किति मंगह जूद अपार कितिया गणत नहीं विचार किते खप टुटह वेकार किते ले मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कितिया दुख भूख सदमार एपे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखण पाए वह जाने जितियां मुह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे कई के जिसनु बख्शी शिवसाला नानक पात साही पात साहु अमुल गुण मुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुला वह अमुल ले जाहि अमुल पाई अमुला सुमाहि अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान अमुलो मुल आख्या न जाए आख आख रही लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करे विख्यान आख बरमे आख इंद आख गोपी तै गोविंद आख ईसर आख सिद्ध आख किते किते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुंजन सेव किते आख आखण पाहि किते कह कह उठ उठ जाहि इते किते होर करे हे ताक न सकह के जीवड भावे तेवड हुए नानक जाने सच्चा सुए जीकु आख भूल विगाड़ ता लिखिए सिर गावा रंगा वार सो दर के हा सो कर के हा जित वै सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक संखा किते वावन हारे किते राग परिस्यो कहियन किते गावन हारे गावह तोनू पौन पानी बैसंतर गावह राजा धर्म द्वारे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदें दासन बैठे देवते आदर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़नर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले

बहुत अनूप ताकिया गल्ला कतिया ना जाई जी को कह पिछे पछताई तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन मह राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माही ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरे न ठाके जाहे जिनकै राम वसै मन माही तिथे भगत वसै के लो करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत अनंत तिथे लो आकार जिव जि हुकम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करडा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तटाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहार। श्लोक पवन

नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पुजंग प्रया छंद नमस्तंग काली नमस्तंग कृपाली नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग पेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामंग नमस्तंग ठामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग ठामंग नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग तर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग टाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग चेते नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुएकय नमस्तंग अनेकय नमस्तंग भूते नमस्तंग रूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग तापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग गम्मे नमस्तस्तरम्मे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग मजबे नमस्तस्तजब्बे अदेशंग अदेशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वकूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवै नमस्तंग पेवै नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जिरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतन्दे नमो सतबन्दे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनन्ते नमस्तंग महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोगजोगे नमो भोगभोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी चंद्वा प्रसाद रूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अधेय है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है रमीक अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिरेक है पुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्ये समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ती बेपूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो कूप कूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
सदा सचिदानंद सर्वं करुणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दंग अगंग उग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछिदी अभेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तथामं तीराजो चाचरी चांद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाते नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्यंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपटचन त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं

साधुदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप निशाल नाम थामना जात जाकर रूप रंग न रेत आद पुरखुदार मूर्त अजौन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम हूं नह जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जाने जे वेद और कतेब रूप रंग न जात पास हो जाने के जेब तात्मात न जात चाकर जन्म मरण बहीर चक्र बकर फिर चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिकह जग जा पीजे जाप आदिव अनाद मूर्त थप्य सब जिताप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरखा पास सर्विश्वर च्यु स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत भूत लख पेश अंगराग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुख दायका माप रूप अमीक अनुष्ट तेक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंग ही न भंग नात्मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेक सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नित भगत नित कूट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मत भार चंत प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंगन पो प्रकाश निस्तिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजन राज पानन पान देवान देव मा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग आभा भंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम हत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्मु अदृश्य धर्मु सर्वा पर नाढ़ अंडन बाढ़ चाचरी चंत्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजंग प्रया चंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय दृश्य कृशय भगवती छंद प्रसाद कथते के आ चिज देशय के आ भिज भेषय के आ गंज करमय के आ भंज भरमय के आ भिज लोकै के आ दित सुखै के अवतूत वरणय के विभूत करणय के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आ सुख वरणय के सर्वा अपरणय के जत के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के वर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीन है के कै अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक व्यय वह के गह भुल गह वह के फूल गुनाह है के साहन साह के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करही मैं के कर्मंग करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं काली मैं के परमंग फही मैं के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसनल वजू है तुमामुल रजू है
हमेशल सलामे सली खत्म दामे गनीबुल सिखस्ते गरीबुल परस्ते बिलंदुल मकान है जमीनुल जमाने तमीजुल तमामे रुजुअल निदाने हरि फुल अजीम मै रजाए की यकीन अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीबुल खिराज है निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रभा हैं सुजुक्त सुधा हैं सुदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्वाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं वो अंगाध रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिभर्गं त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अछिज हैं अछूत हैं कि नरकं प्रणास हैं पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है बंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलिख है अपेक है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित्य है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद्व प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न शत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रुजी देहांद है कि राजक रहिंद है करी मुल्क माल है के हुसनल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीबुल निवाज है हरिबुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनास है समस्तुल निवास है गंजुल गनी महरजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रनास है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गवन है हमीसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल आलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है कर्मुल कमाल है कि जरूरत जुमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मत पार चंद्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंजु अनगुन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुपवनाथ मन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचेज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिश विश अपंड जल थल महंत दिश विश बेअंत अनुपवनाश त्रितर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओ अंकाराद कथनी अनाद खलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपारा डीठ धर्म अत टीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंत व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कल कारण हैं सर्ववारण हैं त्रित के तरण हैं जग के करण हैं मन मान्य हैं जग जान्य हैं सर्वंग पर हैं सर्वंग कर हैं सर्वास्य हैं सर्वनाश्य हैं करुणा कर हैं विश्वम पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं
ब्रह्मंडस हैं, कलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणा करें, जपा जपें, थप्पा थप्पें, कृता कृत्य, अमृता मृत्य, अमृता मृत्य, करुणा कृत्य, कृता कृत्य, धरणी तृत्य, मतीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत्य, अमृता मृत्य, जब्बा कृत्य, अमृता मृत्य, निर्णायक हैं, कलकायक हैं, स्वंपर हैं, कुरनालय हैं, निर्भनायक हैं, सर्पायक हैं, पपंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलुंकृत्य, सर्वाकृत्य, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजांग प्याचंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंताम संसांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, कचरी छंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गाहटा नाथि प्रमाथि अजूनी अमुनि नरागि नरंगे नरूपे नरिखे अकर्मंग परमंग गंजे अलिखे पुजंग प्रयाचंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचिदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते।

दुष्ट दुख ते लिहु बचाय। कृपा करे हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल्विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को क्षय करता। श्री अस्तु जप हे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन भांचित फल पावै सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरताया वई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रह। हो जो या की एक बार चौपाई को कहे, चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय, अर सहस पन तीन कही जय। पाद्रव सुदेष्ट मीर वारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुदारा, सुवैया पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक है, मतिक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है वो भेद, कहे अमेक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तुहे बखान्यो। दोहर

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिड है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साद लगे है पुराणी विस्माद संजोग।

ओलू चरखा चक्की चक थलवारो ले बहुत अनंत लाटू मधानियान गाह पंखी पौंदियां लैन सहा सूए चढ़ पवाइये जंत नानक पौंदियां गणत नंत बंधन बंद पवाए सोए पै कि

नानक जन तू पाए कै संभाले सबना, जिन करता करना किया चिंता पे करनी ता, सो करता चिंता करे जिन पाया जग, तिस जोहा

इन्ह जनता के अवस किशना ही तुद वेकी जग ते उपाया एक नानो तो मेल लहे कापो तुद खो आया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आ बुझाया।

0: अपराधी दूणा निवै जो हंता मिर्गा हे सिस निवाया क्या थी चारिदय कुसुधे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग चल पूज बगल समादंग मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लीला टंग धोई धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफो कटने।

पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे तासा इनकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसना हुक्म मनाए सी हुक्म मनया हो वह प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी।

0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण ना जाई, तोती टिक्का तै जप माली धान मले चा खाई, अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवाज श्री भगाए तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरे नाम।

सुत क्यों कर रखिया सुतक पवै रसोए नानक सुतरे सुत केव न उतरे ज्ञान उतारे तुहे महला पहला।

सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निःचल घर बांधियो गुर कियो बंधानी प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक

मुंदरी, चेनी, कांटे ये ना ने पर है तो सोने दे लेकिन ना वखरा पै गया। ये जी तो उस परमेश्वर का है, उस तो पैदा हुए। लेकिन जिस दिन उस कड़े नूं, उस छांप नूं सुनियारा पट्ठी च पा दे, उस वक्त उदा ना सोना हो जाता है। इउं ही तेरे कोल अरदास कीती, तू नाम दी दात दित्ती। साहब जी ने एक होर प्रमाण दिता है, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ आराम। जे पानी कितों पैदा होया, समुंदर चो। पानी किन्ना उच्चा सुटो नीवे आंदा दा मूल है समुंदर। अग दा मूल सूरज है, अग उपर नूं जांदी है। लेकिन वो पानी समुंदर च कई थावां ते अग लगी हुई है। हुण तां कईआं ने दसता, भाई गुरदास जी ने यह बचन भी लिखे हुए, ना पानी मुकदा ना अग बुझदी, पानी दे विच अग चली जांदी। उहदे च इक दो थां इहो जिहे गुरु नानक साहिब भी गए, उत्थे मूल मंत्र लिख के लगा हुआ। हुण अग दे नाल कोई पानी भाफ बन रहा, इहनूं भाफ कहा जा रहा है। पानी जो बनी भाफ उपर गई, वो जम गई, उन्हें बर्फ कह दिता। फिर उस सूरज की किरण पई, वो अपने रूप पानिया धार लिया, फिर थले नूं वगना शुरू हो गया। वो नाले बन के, दरिया बन के समुंदर दे विच पै गए, उदो समुंदर दा रूप। जो तेरे अगे यह अरदास कीती, सन विछड़िया नूं मलाला, तू कृपा कीती, जदों मलाया फिर तेरा ही ना रह गया, मेरा ना खत्म हो गया। जिवें गहणियां दे ना खत्म हो गए, कांटे वालियां कड़े खत्म हो गए, तां ते कणक वखानी आख्या भी सोना ही है। प्रगट्यो जोत सह सुख सोभा, बाजे अनहत वाणी। तेरी अलाही जोत जिहड़ी है वो प्रगट हो गई। उस दिन सहज अवस्था आ गई है, उस दिन इलाही नाद, उस वाहिगुरु अकाल पुरख का हथ कहिंदे खत्म नूं मरचण नूं अनहत, जिहड़ा कदी टुटदा नहीं गा, जिहनूं अजापा जाप कहिंदे आ, वो बख्शिश करता। हुण वो बख्शिश करता, हुण उहदे घर दस्सिया है, ओदा घर जेड़ा है चलायमान नहीं है। दुनिया की हर वस्तु खत फना हो रही है, एक फना नहीं हुंदा ओ अकाल पुरख। बारहवां बाणी जो सतगुरु साहब ने बख्शी है सानू महीनियां दी, इस करके बख्शी सी कि लोग संक्रांत वाले दिन सूरज की पूजा करते सी, मस्या ते पूर्णमासी नूं चंद्रमा की पूजा करते सी। साहब जी ने आख्या नहीं कि वो करते दी किरते आ, मैं तेनू इस बाणी च सूरज की बाणी बारे तुम दसा, लेकिन सूरज नहीं सुन सा, सुनी जानी तेरी एक कोले, तेरे ते कृपा करनी है एक ने। जदों एक दा ज्ञान होया उदू उस घर दे विच पहुंचे, उदू कहना गुर की ओ बंदा नी, ए गुरु ने कृपा कीती है कि मैनू एक दे नाल मिला दिता। गुरु तू बिना दूजा होर कोई नहीं, तुद बिन दूजा ना ही कोई, तेरे तू बिना कोई होर जेड़ा नहीं। इस कबीर कबीर प्रीत एक सो की है, आन दुबदा जाए, बाकी सब दुबदा उन्हें छड़ दे, सिर्फ एक नाल। जिन्हें एक दा ना लिया उहदे ए लोक सुखीए, पर लोक सुहेले, नानक हार प्रभ आपे मिले। अज असू का महीना आरंभ होया, सतगुरु साहब जी के इस भरे दरबार विचों हर आए माई भाई नूं लाभ प्राप्त होवे, सतगुरु साहब जी अपने पाने अंदर सुख संमत आप बतीत कराउण। फरमान जी विचार करते हैं, बहुत भुला हुई सतगुरु साहब जी, गुरु की संगत अणजाण बच्चा जान के मा

कर सांत सुख मन आए वसिया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, कह नानक सुनो संतो,

मिल साधु हर गुण गाइए बसंत हिंडोल महला चौथा। आवन जान भया दुख बिखिया, आवन जान भया दुख बिखिया, देह मनमुख सुन्नी सुन्य, राम नाम खिन पल।

निमख तिस नमस्कार रहा। जिसह प्राप्त साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते भये मुक्त भगत अर

जय गोविंद भगत सो धन देश, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ का ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो ध्यान।

चढ़े जोगी हिता नाम पल पाई। एत किंगुरे ध्यान न लग लागे जोगी ना सच पल पाए। एत किंगुरे शांत न आवे जोगी अभिमान न विचो जाए। पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी। गुरमुख होवे ता तंती वाजै इन बिद तृष्णा खंडी। हुकम बुझै सो जोगी कहिए एक सुस्योले।

सन भेख करे जोगी रोग न जाए दुआया। हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवै सोई बुझै जोग जुगत सो पाए। जोगै का मार्ग बिख मोहै जोगी,

जाए किंगुरी वाजय जोगी सा किंगुरी बजाए कह नानक मुक्त हो वह जोगी साचे रहसमाए। राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख देह वड्याई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजय काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिस दे उपजय तिस ते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा दूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सदा शब्द रवै घट अंतर सच्चे स्यों लिव लाई सत संगत मैं नाम निर्मूलक वड्डा भाग पाया जाई परम न भूलो सतगुर सेवो मन राखो एक ठाई बिन ना वैसा भूली फिर दी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडै पाखंड जोग न पाई शिव नगरी मैं आसन बैसे शिव नगरी मैं आसन बैसे गुर शब्दी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई इहो शरीर सरवर है संतो इस नानक रेल बलाई इह शरीर सरवर है संतो इस नान करे लिवलाई नाम स्नान कर है से जन निर्मल शब्द मैल गवाई

विषण महेश त्रय मूरत त्रैगुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिकटी छूटै चौथा पद लिबलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद बखाने तिन्ना बूझ न पाई बिख्या माते परम पुलाए उपदेश कह कहै किस पाई भगत जना को उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागै सो गत पाए शब्द

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चेत अदिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निर्मूल निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हौ गुरसलाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक कह बेनंती ना भव।

संत गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई राव। हार बिन सब किच महला संतो क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सो पूजा होवे पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाई, शब्द मराय मन निर्मल संतो एहा एह पूजा थाए पाई। पतत पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई, बिरनावै होर पूज न होवी परम भुली लोकाई। गुरमुखा पछाणै संतो राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूजा आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे वेस।

हरी सच्चा नाम वस्या कट अंतर करता है आप सुवारी रहाओ पारस पर से फिर पारस होए हर जियो अपनी कृपा तारी एक पी कर फिर बमानी तिनबू जू है बाजी हारी एक आन दिन भगत करे दिन राती राम नाम युर तारी आन दिन राते सजे माते सजे हूं मैं मारी पै बिन भगत नाही पै बिन भगत न होई कबही पै पाए भगत सवारी आया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुण का अंत न पाया तिस क्या गुणा का अंत न पाया हो गावा शब्द बिचारी हर जियो जपी हर जियो सलाही विचो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सचे भंडारी अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी कृपा कल धारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द बिचारी जियो पिंड सब किछ है तिसका आखण बिखम बिचारी शब्द लगे सही जन निस्तरे पौ जल पार उतारी बिन हर साचे को पार न पावे बूझै को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्द राती साचा नाए प्यारी काया अमृत नहीं पर पूरा पाये शब्द विचारी जो प्रभ खोजी जो प्रभ खोजे ऐसे ही पावे होर फूट मुए हंकारी बाद बादी बिनसा सेवक सेवा गुर कह हित प्यारी सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हों मैं तृष्णा मारी सतगुर दाता तिन पिछाता जिसनों कृपा तुम्हारी सतगुर न सेवै माया लागे डूब मुए हंकारी जिचर अंदर सास तिचर सेवा की चय जय मिलिया राम मुरारी आन दिन जागत रहे दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कुमाई अपने गुर विटो बलिहारी माया मोह बिन सजाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से ही जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से ही मुए जे नाम न चेतै भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया तृप्त रहे आगाई संतो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर पूरे की वड्याई रहा आपे करता आपे भुगता देंदा रिजक सबाई जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाई आपे साजे सिष्टो पाए सिर सिर धंधा लाई तिसा सरे बहुता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई अपना आप उपाए अलख न लखना जाई आपे मार जिवाले आपे तिसनो तिल न तमाई एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई सेवड भागी जिनी को जाता सच्चे रहे समाई आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन न जाई आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाई वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई इक ना नावो आप पुलाई इक ना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा सलाहो संतो इस दी वड्डी वड्याई तिस बिन अवर न कोई राजा कर तपावस बणत बनाई न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई तिसनो प्राणी सदा त्याव जिन गुरमुख बणत बनाई सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस
हृदय नाम वसाई। सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख है, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रव्या सब थाई। राम कली महला पंजवा, जस्त दिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किन्हीं किया पर व्यर्थ पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा। किन्हीं निवल पोए अंगम सादे, मोहे दीन हर हर आराधे।

कोई कहतो अनन पगौती मोहे दीन हर हर ओट लीती के नहीं कहया हो तीर्थवासी कोई अनंत जी पया उदासी कि नहीं पवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया के नहीं कहा मैं कुल वड्याई कि नहीं कहा बहा बहु पाई कोई कह मैं तनय पसारा मोहे दीन हर हर आधारा कि नहीं कुगर नृत्य कराई किन्हो वर्त नेम माला पाई किन्हें तिलक गोपी चंदन लाया मुहे दीन हर हर हर त्याया किन्हें सिद्ध बहु चेट कलाए किन्हें पीक बहु थाट बनाए किन्हें तंत मंत बहु खेवा मुहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतुर कुहावे पंडित को खट कर्म सहत स्यो मंडित कोई करै आचार सुकरणी मुहे दीन हर हर हर सरणी सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नावे मन न प्रबोदे कौ नानक जो साध संग पाया बूझे तृष्णा महा शीतलाया राम कली महला पंजवा इस पानी ते जन तू करया माटी काला का ले देहो देहोरा करया माटी काले देहोरा करया उक्त जोत लै सुरत परीखिया मात गर्भ में जन तू रखिया राखन हार समार जना सगले छोट विचार मना रहा जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रा जिन दिए प्रात पुतहारी जिन दिए तुद बनता अरमीता तिस ठाकुर को रख लो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की करहो।

बसुदा दियो बर्तन मलना, तिस ठाकुर के चेत रख चरना, पेखन कौने तर सुनन कौ करना, हस्त कमावन बासन रसना, चरण चलन को सिर कीनो मेरा, मन तिस ठाकुर के पूजो पैरा, अपवितर जिन तू करया, सगल जोन मैं तू सिर धरया, अब तू सीज पावे नहीं सीजै, काज सवरै मन प्रभ त्याए ईजै, ईहां उहां एक ओही, जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत मन आलस करै, जिस विसरिया एक निमख न सरै, हम अपराधी निर्गुनियारे, ना किछ सेवा ना करमारे, गुर बोहित वडभागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया। राम कली महला पंजवां, काहू बिहावै रंग रस रूप, काहू बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिलख वापारा, संत बिहावै हर नाम अधारा। रसना साच बनी सबका एक तनीरा, काहू बिहावै भेद अर्थ बाद, काहू बिहावै रसना साध, काहू बिहावै लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मुरारी, काहू बिहावै खेलत जुआ, काहू बिहावै अमली हुआ, काहू बिहावै पर्द दर बचो राए, काहू बिहावै पर दर बचो राए, हर जा

संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रैन दिन रैन चालत, काहू बिहावै सो पिड़ मालत, काहू बिहावै बाल पढ़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नाट नाट नाट नाटिक निरते, काहू बिहावै जी आए हिरते, काहू बिहावै राज मंडरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जीवत, संत बिहावै हर रस पीवत, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड़ नहीं को स्याना, कर कृपा जस देवै नाओ, नानक ता

जाका नाम सिमरत पौ जाए, तैसे संत जना राख हर राए। ऐसे राखन हार दयाल, जतका देखो तुम प्रतपाल रहाओ। जल पीवत जो तिखा मिटंत, तन भिक्षे गृह आवत कंत। लोभी का तन प्राण आधार, त्योहार जस हर हर नाम प्यार। किरसानी जो राख रखवाला, मात पिता दया जो बाला। प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्योहार जन राख।

नाम सगल योहार, हर कै नाम सगल उदार। ज्यों पावक संग सीत, ज्यों पावक संग सीत को नासो, ऐसे प्राचत संत संग विनाश। ज्यों साबुन का पुरको, ज्यों साबुन का पर उजल होत, नाम जपत सब भ्रम पौ खोत। ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चात्रिक बूंद की प्यास। ज्यों कुरंक नाद कर्ण समाने, त्यों हर नाम हर जन।

सब सगल तुम्हारी तारना, ये मन हर का नाम उदाहरणा रहाओ। खिन में थाप थापे कुदरत सब करते के कारण, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारना। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना, भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इया उहां न हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना, तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक अनेक बार कोट जन ऊपर।

दर्शन भेटत पाप सब ना सहे हर स्यो दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते हुए सिखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पतत पुनीत किए खिन पीतर ज्ञान अंधेर मई करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरण आई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंध कूप भिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बन आई जन्म मरण का सहसा चूका बाहौड़ कथा ना ताई नाम रसायन हो मन राता अमृत प्रीत पताई संत संग मिल कीर्तन गाया नेह चल वस्या जाई पूरा गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निदान पाया वड भागी नानक नरक न जाई काल सियाणप उकत न मेरी पूरा गुरु कमाई जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलतर महा

संभाले, आप लिए लड़ लाई, साच धर्म का बेड़ा बांधया, पव जल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई, अकाल मूर्त जूनी संभव, काल अंधकार दीपाई। अंतर जामी जीवन का दाता, देखत तृप्त अघाई, एक अंकार निरंजन निरपव, जल थल रह समाई। भगत दान भगत भगता को दीना, हर नानक जाचे माई। रामकली महला पंजवां श्लोक, सिखो शब्द प्यारे ओ जन।

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दो तंगा बहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है घर ता तेरा है सब कुछ है जिस दे सो पावै सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा है सचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द चित कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच तो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह नमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुदवाज समरथ को नाही कृपा कर बनवारिया इस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनो होर क्या कर है बेचारिया एक परम भूलै एक परम भूले फिरै दय दिस एक नाम शब्द एक नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावै कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावै आवो संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौ गुर को हुकम मन्या पाईऐ हुकम मन्या गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथियो कथ कहानी ए मन चंचला चुतराई किने न पाया चुतराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत परम पुलाया माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान की सास सबिटो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एक टंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले सा तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा काम मुले ना कीचै जिते अंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किना तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाने आख है ता वेख है सब तू है जिन जग तो पाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा की नी सचा मन वसाया जी जंत सब तो दो पाए कवेख पर सुन आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया
कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां हकेरी बिख मार्ग चलना लब लोभ अहंकार सच तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालों ने की इत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप सजया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगतां जुग जुग निराली ज्यो तू चलाहे तिव चलाहे स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जेव तू चलाए तिलवाए चलाए जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए है से हर हर सदा ते आवे जिसनु कथा सुनाए है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावे तिवै चलावे एह सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एह तिन कह मन वस्या जिन तुरो लिख आया एक फिर कनेरे करै गल्लां गल्ली किनै न पाया कह नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यो पवित संगत सबाइया कहिंदे पवित सुन दे पवित जिनी से कहिंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजाय बिन सहजे सहसा ना जाए सहसा किता संयम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कित संयम धोता जाए मन तो बहु शब्द लागो हर सिर हो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाय एह सहसा बजाए जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिन जन तिनी जन्म जू है हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जू है हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता निर्मल सतगुर से करनी कमाणी कूड़ की स पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जा रे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जी और है गुर नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मा संभाले आप छड सदा रहे परनाय गुर बिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुर तेवे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होरथै कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सुनाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख बखाणी हर हर नित करै रसना कया कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लगाए हो आसमाओ शब्द से ती मन मिलया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सगत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए थोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए।

सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ता सार न जानी, तत्ता सार न जानी गुरु बाजो तत्ता सार न जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुसा सुत्या रहण विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन बसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनु आन दिन हर लिव लागे जागत रहण विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिया, मनो क्यों विसारिया वरदाता जी अगन में आहार पहुंचावे। उसनों क्यों पोए न सकी जिसनों अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया। कहे नानक ये वरदाता सो क्यों मनो विसारिया, जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सभी को जे ही करता है खेल रचाया। जात सपाणा ता जमया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया मर वरताया। ये माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन विचे माया पाया। हर आप मुल कहै मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विटो रहे लोक विरलाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनु सिर सौपिया विचो आप जाए, जिसका जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आप मुल्क है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो तन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होवा वणजारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर कितै जिचर हर रस पलै न पाए। हर रस पाए पलै पिया हर रस बौड़ न तृष्णा ला गया, हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जस आए। कहे नानक होर अन रसा विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी पुजिया था चलत होवा चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मैं आया। मन चाओ पया प्रभया गम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सुख दुख ना व्यापै, गुरचरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापै। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभया मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस युग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्रो मेरे ओ हाथो मैं जो तरी, हर बिने वरन देखो कोई, हर बिने वरन देखो कोई नदरी हर निहालिया। यह विस संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिने वरन कोई, कहे नानक ने तरंद से सात गुर मिलिया देव दृष्ट होई। ए सरवनो मेरे ओ साचे सुनै नो पठाए, साचे सुनै नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हो रसना रस समाणी, सच लख विडाणी ताकि गत कई न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचे सुनै नो पठाए। हार जियो गुफा अंदर राख वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन नो द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वार लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया, तह नेक रूप नौ नाम निद तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर राख वाजा पवन बजाया।
ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਕਸਮੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਵੇ ਅਨਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਗਦਾਤਾ ਸੋਏ ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇ ਲੋਏ ਜੀਓ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਜੀਓ ਅਵਰੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਰਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਜਗ ਅਮਰ ਟਾਲਿਆ ਤੋਰ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਜਾਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਜੀਓ ਸਤ ਗੁਰ ਕਰੈ ਹਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨੈ ਕੇਰੀ ਹਰ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ

साथ मिलन ना जाई। परम में परम तड़ा कह नानक गुर बिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंद मेरे गोविंद गोविंदा, प्राण अधारा मेरे गोविंदा। कृपाल मेरे कृपाला, दान दातारा मेरे कृपाला। दान दातार अपर अपार, कट कट अंतर सुहन्या इक दासी तारी। सबल पसारी जी जंत ले मोहन्या, जिस नोरा खैसो सच पाखे गुर का शब्द विचारा। कहो नानक जो प्रभ को पाणा,

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गल वंत पापी पाप अशांत मूड यार करे सुधाए अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक करे पाप नानक नींद कह मारे न जावा के जो तुम पाव है सही सही कर सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर्फ।

ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बना ब्रह्म ज्ञानी का देवी समा ब्रह्म ज्ञानी पर सारे महा ब्रह्म ज्ञानी के नहीं संधा ब्रह्म ज्ञानी ने तावर

ब्रह्म ज्ञानी जी ने कौन खाना ब्रह्म ज्ञानी जी का ब्रह्म ज्ञानी जाना है।

के सेवक को कौन अपनी ऊर्जा प्राप्त के सेवक के नीचे उसके नीति चीनी महकल रखा पठन करा लक्षण को रखा मन जन कर्त को पहाड़ चित्ते कर्त